கைவி இன்ன அப்போரிதி இத்தை போரிதி இத்தை அப்போரிதி இத்தை இதியோக்திதி இத்தை நிக்கியாசுமேன் η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη μέσα σε κομμάτια καθρέφτες από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.